पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार ज्ञान दे सागर जुग हो जुग अटल गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त होई है साहिबां दी पावन हजूरी अंदर सज करके गुरु सवारियां दी संगत करके अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कीते ने जैसे तो मराल माल बैठत है मान सार मुक्ता अमोल खाए खाए बिग सात है जैसे तो सज्जन मिल बैठत है पाक साल अनक प्रकार बिज नादरा सुखात है जैसे द्रुम छाया पर बैठत अनेक पंछी खाए फल मधुर बचन के सुहात है तैसे गुर सिख मिल बैठत है धर्मसाल शब्द सहस सहज रस अमृत अगात है जिवें हंसा दियां डारां मान सरोवर ते जाके बैठ दियां ने मोती खा खा के दुध नूं खांदे ने पींदे नहीं है छक के तृप्त हुंदे ने अंदर दी खुराक मिलदी है आनंद मिलदा है जिवें एक जगह ते सज्जन मित्र अन्न जल प्रसाद पानी शाकिल मेरे समय तो बाद मिले हुण बहुत प्रसन्न हुंदे ने बड़े खुश हुंदे ने तीजा वचन करदे ने जिवें एक दरख ते अनेकां पंछी बैठदे ने और सोहना आनंद माणदे ने फल खांदे ने छां माणदे ने तेवें गुरु दे गुरसिख गुरु दरबार विच संगत विच बैठ के अमृत बाणी शब्द रस प्राप्त करके आत्मा दी खुराक है बहुत प्रसन्न हुंदे ने तैसे गुर सिख मिल बैठत है धर्म साल शब्द सहज रस अमृत आघात है आप बहुत वड्डियां भागां वाले हो सतगुरु जी दी अमृत बाणी दा खालसा जी आनंद प्राप्त कीता है गुरु बख्शिश प्राचीन पंथ प्रकाश दी कथा गुरु खालसा जी लड़ीवार चलदी आ रही है आप जिया ने बहुत ही प्यार विच प्रसंग सरवण कीते ने जिवें तुसाने परसों चौथ दो दिन पहला बराड़ा नाल बखेड़ा फिर मिलाप ओ प्रसंग सरवण कीता कल दी कथा अंदर कपूर सिंह दा प्रसंग तुसाने सरवण कीता सी किवें मेरे गरीब निवाज चौजी प्रीतम कलगीधर पातशाह महाराज कपूरे कोल पहुंचदे ने उस तों किले दी मंग करदे ने सतगुरां नूं घोड़ा भी भेटा कीता सी पर अंदर श्रद्धा नहीं सी प्यार नहीं सी कहन लगा सतगुरु जे तुहानूं मैं किला दे दियां तुरक मैनूं फाहे ला के मार देणगे गरीब निवास सच्चे पातशाह कहन लगे असीं ते भई तैनूं राज देना चाहुंदे सी पर बिना भागां तों प्राप्ती नहीं हुंदी हुण तू केड़ा फाए लाके नहीं मरना होए भी फाए लाके ही मरेगा फिर वो बोल पूरा होया सी इसे खाने जदों चोरी दा इल्जाम कपूरे ते बिलकुल सिद्ध हो गया फिर फाए ला दिता सी इस तरह कपूरे दी मौत होई सी सत्कार योग भाई साहिब भाई रतन सिंह जी ने बहुत ही प्यार विच इस प्रसंग नूं कलम बंद कीता सी आओ जिवें अज गुरु का खालसा सरहंद वाले हुंदा है

नहीं अकाल शैन शाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे तुमको खुदा की जुबान से। वो डरदे नहीं है अते इस तरह